0: ये है
1: Like a Radio.
2: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए. Like a Radio और Like a Gold लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज. रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड. जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@likeareadio.com.
3: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Like a Radio.

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे की ता अपना जिव तिस दी वड्याई।

जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल तिस विच जी जुगत के

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: Leica Radio. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
2: Your £1 in British sterling can get you up to 128.1. Send your money to India via SBI Yono app or branch before the end of June and be in it to win a £75 voucher daily when you send over £1,000 and a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. T&Cs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Weekend Breakfast is sponsored by Here Are Foods, specialising in all your kitchen needs, including spices, lentils, rice and flour. Here Are Foods, king in quality, king in taste.
3: You. Yeah, you. Listening to the radio. Up to whatever. We just wanted to let you know there's a lotto draw coming up, and
4: it could be you.
3: Yeah, what he said. Lotto, from the National Lottery. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
5: Fire up the Barbie! With Aldi's barbecue bundle, you can rustle up burgers to feed four. Get British beef quarter pounders, white rolls, baby leaf salad, cheese slices and tomato ketchup, all for under a super £6. That's flipping amazing value from Aldi. Which cheapest supermarket 2025?
6: The Unity Cup 2026 is coming to the Valley Charlton Athletic, featuring your Indian national football team. On Tuesday, May the 26th, Nigeria face Zimbabwe, then Jamaica's Reggae Boys clash with India's Blue Tigers, with Punjabi MC bringing the fire. Saturday the 30th of May, the huge final with live Afrobeat, reggae and Bollywood stars. Get tickets now at unitycup.com. Use the code LEICA15 for 15% off. Exclusive radio partners, Leica Radio.
7: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
8: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
7: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
8: गारंटेड
7: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
9: साउथ हॉल ट्रेवल
8: फोन 02085748410।
9: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
10: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
11: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
11: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
11: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
12: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
13: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
14: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रैजिक होती है।
15: From the makers of Rocky और रानी की प्रेम कहानी, Dharma Productions presents Chand Mera Dil. Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil, coming to cinemas on May 22nd.
16: Chand Mera Dil, Chand Mera Dil.
17: Market. के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
18: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
17: मसालेदार मसाला टैंगी टोमेटो सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन पोटैटो चिप्स।
18: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
19: मॉम, आई डोंट नो व्हाट टू डू एनीमोर, माय हेयर इज गेटिंग वर्स, आई ट्राइड एवरीथिंग, नथिंग वर्क्स।
20: बेटा, यू आर नॉट अलोन, फॉर 5 जनरेशंस आवर फैमिली ट्रस्टेड वन थिंग, प्योर हर्बल केयर, आमला, ब्रिंगराज, नीम, रियल इंग्रेडिएंट्स, नॉट केमिकल्स।
19: सो वेयर डू वी फाइंड समथिंग लाइक दैट नाउ?
20: राइट हियर इन लंदन, बैद्यनाथ सिद्धायु हेयर ऑयल शैम्पू एंड टूथपेस्ट, प्योर आयुर्वेदिक प्रीमियम एंड मेड एक्टिव आवर एल्डेस्ट यूज इट।
21: फ्रॉम द हाउस ऑफ बैद्यनाथ विद ओवर 100 इयर्स ऑफ आयुर्वेदिक लेगेसी, अवेलेबल एट ऑल क्वालिटी फूड स्टोर्स एंड अदर लीडिंग रिटेल स्टोर्स अक्रॉस द यूके।
22: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
23: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर, पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो। डिपार्चर 5 सितंबर ना, मंत्रा हॉलिडेज, कॉल करो 0203-773-6333। मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
24: The people of Britain have bought loads of noise-cancelling headphones. With a Barclaycard Rewards credit card, you could get cash back on eligible purchases and no fees on spending overseas. What you buy is your business. Rewarding you is ours. Subject to financial status, T's and C's apply. Check if you're eligible at barclaycard.co.uk. Representative example, 28.9% APR representative variable and 28.9% purchase rate per annum based on a £1,200 credit limit.
25: Zee Cinema par dekhiye mega double premiere, De De Pyar De 2, starring Ajay Devgan and Rakul Preet Singh.
26: तूने बता दिया ना सब घर पे?
27: Of course बता दिया।
28: थोड़ा बड़ा है मुझसे and he's divorced, so
29: कैसी बातें कर रहे हो बेटा?
30: मुझसे 1.5 साल छोटा है आदमी, बुड्ढा साला।
25: देखिए मेगा डबल प्रीमियर दे दे प्यार दे टू, कल शाम 6 बजे UK और 7 बजे CET, आपके अपने जी सिनेमा पर। अवेलेबल ऑन स्काई 708, स्काई ग्लास 713, वर्जिन मीडिया 810, BT 395।
31: A Leica Radio Classic

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।